की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Have you seen Rekha ji? Oh my God. Anyways, good morning, Radio Masti 24/7 Antara aapke saath yahan par. It's a beautiful Tuesday morning. Of course, aapka mera saath hai, toh beautiful toh hona hi hai. But Masti ka mantra chal raha hai yahan par. And bhai, now Rekha ji is kind of setting another level ke standards. Toh kya hai ki abhi jo hai social media ka koi bhi aap page khol lijiye, so the paps are everywhere ki kaun sa celebrity ke ghar mein jo hai bappa aaye hue hain, and har unke ghar mein ja ke ki of course prasad to unko milta hi milta hai, but of course unke jo photos and ye videos sab. I just saw रेखा जी का जो है, आई थिंक वो अम्बानी नीता अम्बानी जी के घर में ठेला में जो है गई हुई थी गणेश दर्शन के लिए, गणपति दर्शन के लिए. एंड इट इज जस्ट आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर कि भाई हम यूथ फाउंटेन की बात करते हैं, राइट? एक वो हमारी रेणुका है जो कि उसका पता नहीं बता रही है. आई थिंक रेखा जी भी सेम, एंड ऑल दीज लेडीज विद द आर, आई मीन Seriously, we need to know कहां से क्या क्या हो क्या रहा है. एंड दोनों एक्चुअली नोटिस किए आर ई दोनों ही, रेखा रेणुका, शी लुक्स फैंटेस्टिक विद ऑल इन ऑल दोस साड़ीज, एंड यू नो व्हेन शी गेट्स डेक्ड अप विद बड़ा बड़ा झुमका एंड विद ऑल दोस गोल्ड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, शी कैरीज हरसेल्फ सो वेरी वेल. शी इज सो वेरी प्रिटी, सो नाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर पीपल वी सी अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. इनफैक्ट लाल बागचा राजा जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट गणपति जो है जो महाराष्ट्र में हमेशा हर साल उनकी बात होती है, एंड दूर दूर से लोग जाते हैं उनके दर्शन करने. हमारे विद्युत जामवाल जो है उन्होंने एक्चुअली जो है उनका एक वीडियो विच वेंट वायरल वेर हीज उन्होंने शंख बजाया एंड देन उन्होंने डमरू बजाया, सो ही काइंड ऑफ ओपन्ड इट द होल पंडाल फॉर पीपल, एंड इट द होल फीलिंग वॉज सो सरियल एंड सो वेरी अमेजिंग. बापा का टाइम is one of my favorite times. Modak ka time also is one of my favorite times. So well, aap sabhi ko jo hai bilkul shubhkamnaye hum log kal se diye hue ja rahe hain. Subah hamara masti pe bhakti jo hai abhi is hafte jo hai, it is more of Ganpati Bappa, and har sham 7 baje jo hai hum aarti ke liye jo hai bappa ki aarti bhi chalate hain. Just wanted to remind you that har sham 7 baje bhi aisa hi hone wala hai. And do not forget there is Ganesh Utsav Maharashtra Mandal Singapore ka, which is happening on the open road Ferrer Park Holiday Inn ke bikal mein jo jagah hai, beautiful tarike se jo hai pura pandal sajaya gaya hai, and they are all set and ready to welcome you over there as well. Filhal main dekh rahi hu tukur tukur karke agle gaano ki aur, let them come, let them play, let them take away your heart, and I will be right back. Good morning.

0: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बापा मोरिया। सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा।
3: 8:00 हो चुके हैं, 18 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 पर। मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। एंड भाई अभी ये चल रहा था बात, तो लेट मी कंटिन्यू विद दैट इटसेल्फ। भाई 26th of September, बस ज्यादा दूर नहीं है ये डेट। अगर आपका प्लान अभी तक नहीं बना है, आई वॉन्ट यू टू मेक इट अ ब्यूटिफुल भजन जैमिंग लोडेड वन, क्योंकि बैक स्टेज सिबलिंग्स जो है ये आ रहे हैं सिंगापुर विद दिस इवनिंग ऑफ भजन जैमिंग ऑन 26th of September। अब क्या है कि ये एकदम वो टिपिकल वैसा वाला नहीं है कि आर्टिस्ट स्टेज पे है एंड वहां पे दूर से आप कहीं पे बैठ के उनको देख रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ आइडिया है ऑफ kind of singing together, है ना, भजन्स and soulful melodies and community jamming वाली जो feel होती है ना, कि आप भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, सब साथ साथ एकदम you know विलीन हो जाते हैं किसी एक moment में, खो जाते हो आप उस moment में when ऐसा इस तरह का समा बनता है। तो this is what you are going to experience over there and you kind of add to that divine ambience and pure sattvic cuisine वगैरह के साथ। I think they have curated this really really well, sounds like quite an experience, right? So by 26th of September 2026, यानी कि Engage Theatre 2, Suntec Singapore में जो है आपने बिल्कुल जाना है। कैसे जाना है? सिस्टिक पे पहले तो जाना है और वहां जाके अपनी टिकट जो है वो बुक करा लेनी है। But there is always a but, जब भी ऐसे fantastic events होते हैं सिंगापुर में, वी ऑलवेज गिव यू दिस मौका कि भाई क्योंकि आप स्पेशल हो, आप रेडियो मस्ती 24/7 सुनते हो और आप इसी बात का जो है बिल्कुल छोटा सा आपको एडवांटेज नहीं, काफी बड़ा सा इनफैक्ट एडवांटेज मिलता है, दैट यू स्टैंड अ चांस टू विन टिकट्स फॉर द शो एज वेल। नाउ हियर कम्स योर क्वेश्चन आज के दिन का। ओके, बैक स्टेज सिबलिंग्स की यहाँ पे बात हो रही है एंड बैक स्टेज सिबलिंग्स के इस भाई बहन की जोड़ी का नाम क्या है? आई नो आज मैंने तो उनका नाम लिया भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है ना कि मैं एकदम स्लाइट सा ऐसा हिंट देके निकल जाती हूँ, बट आज मैंने वो भी नहीं किया है। बट आई वॉन्ट रियली वॉन्ट यू टू फाइंड आउट एंड आई एम श्योर दैट यू नो एज वेल। ओके, ऑप्शन चाहिए? ऑलराइट, सो बैक स्टेज सिबलिंग्स के इस भाई बहन की जोड़ी का नाम क्या है? ए राघव एंड प्राची, बी राहुल एंड प्रिया, सी none of them. So A Raghav and Prachi, B Rahul and Priya, ya C none of them. Kaun sa hai aapka option? अगर आपको पता है then send in your answer right away. WhatsApp कर दीजिए हमें 9158963 पर and stand a chance to win a ticket to Bhajan Jamming with Backstage Siblings. भाई अब सिस्टिक से डायरेक्टली बुक करानी है या हमारे साथ अपनी किस्मत आजमानी है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अभी थोड़ा टाइम आपको स्पेस भी दे देती हूँ सोचने के लिए। वैसे इजी है क्वेश्चन, फटाफट से आंसर भेज दीजिए। यू नेवर नो, मे बी टुडे इज योर डे। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: ओ कबीरा मान जा, मान जा और ट्रैफिक अपडेट भी साथ साथ में ले जा। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ ट्रैफिक अपडेट 8:30 बजे क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स पीआईई एट सिलेटा लिंक एग्जिट। एक एक्सीडेंट की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स इटवास आफ्टर क्लेमेंटी रोड, अवॉइड करे लेन नंबर 1। और एक और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन एसएलई टुवर्ड्स सीटीए बिफोर वुडलैंड्स एवेन्यू 2। सो वेल, ये 10 घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज कुणाल वाला की आवाज आफ्टर अ गुड लॉन्ग टाइम। सीरियसली, ये एक वन ऑफ द आर्टिस्ट है जिनको चलना चाहिए था काफी टाइम, बट फॉर सम रीजन बंदा चला नहीं, बट आवाज कितनी सही थी। नहीं,
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: Just a while ago, we were discussing aap hi mein se kisi ke saath about the haze and what like the N95 masks and everything has come into action all of a sudden. Radio Masti 24/7 Antra aapke saath, and yes, giving you updates on Masti ka mantra is me, aapki Antra yahan par. Singapore, agar aaj bhi aisa lag raha hai ki matlab aapne bhi windows wagaira band kar rakhe hain because of the haze situation. ग्रे सा लग रहा है, तो बिल्कुल जो है फॉल्ट किसी की भी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली वी मे हैव टू लिव विद दिस फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऐसा कहा जा रहा है. अकॉर्डिंग टू NEA का लेटेस्ट एडवाइजरी, सिंगापुर इज लाइकली टू एक्सपीरियंस स्मोक हेज इन कमिंग डेज एज वेल, विद द 24 आवर का PSI फोरकास्ट टू रेंज फ्रॉम हाई मॉडरेट टू मिड अनहेल्दी. वेल, जो सेंट्रल सिंगापुर है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रखा है. इट हैड actually climbed to 145, firmly in the very unhealthy range. Latest update jo hai is subah ki bhi bahut zyada great nahi hai. By 6 a.m. all five regions of Singapore were recording PSI levels in the unhealthy range as well, with central highest 154 per, east and west at 128, south at 111 and north at 100. Well, कहां से आ रहा है इस बारे में हम लोग पिछले कुछ दिनों से बात ही कर रहे हैं. सो बेसिकली NEA भी आपको यही बोल रहा है, हम भी बार बार आपको यही बोल रहे हैं. यस, द N95 मास्क, दैट इज वन वे ऑफ, बिकॉज घर से बाहर तो निकलना ही है. वी हैव टू गेट अलोंग एंड बाकी जो दिन का हमें काम है वो तो करना ही करना है. बट When you are thinking about exercising, अगर आप morning walk, run या outdoor workout plan कर रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. NEA जो है बार बार advise कर रहे हैं healthy people to reduce prolonged and strenuous outdoor का exertion when the PSI is in the unhealthy range, while children, elderly people and जो भी vulnerable groups हैं should minimize it. Basically, Singapore का weather app observe ये है कि weather अम्ब्रेला लेके निकले नहीं निकले उतने तक सीमित नहीं है. फ्रेश एयर में निकलूं या घर के अंदर ही फ्रेश रहूं, या वो भी चेक करना पड़ेगा. जस्ट किडिंग. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड एंड मीनवाइल इंडोर्स हो या आउटडोर्स, सम म्यूजिक में कोई भी हेस नहीं. बैक टू हमारा गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

पक्षी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pe. 9:05 by the studio clock. Good morning, good morning. Welcome, 9 बजे के उस पार हम लोग पहुंच चुके हैं रेडियो मस्ती 24/7. मैं अंतरा यहां पर आपके साथ. मस्ती का मंत्र चल रहा है, which means it's a Tuesday morning. वैसे तो मैं कल सुबह भी आई थी, but well. Anyways, भाई भारत से खबर आई है, चलिए भारत चलते हैं. भाई स्पोर्ट्स लवर्स एंड स्पेशली फॉर्मूला वन के फैंस, चेन्नई जो है भारत में could be getting a serious sporting upgrade. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय जो है उन्होंने अनाउंस किए हैं प्लान्स फॉर नॉट जस्ट वन बट टू मेजर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट्स, एक ओलंपिक सिटी एंड अ डेडिकेटेड मोटर स्पोर्ट्स सिटी एज वेल. एंड ये जो प्रपोज्ड ओलंपिक सिटी है इन चेन्नई इज एनविजन्ड एज अ कंप्लीट हाई परफॉर्मेंस का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड क्लास अरेनास, एडवांस्ड इक्विपमेंट, एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन फैसिलिटीज, प्लस अकोमोडेशन फॉर एथलीट्स एंड कोचेस एज वेल. वेरी वेरी बिग एम्बिशन. तमिलनाडु के एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेन करना एंड अल्टीमेटली ब्रिंग होम मोर ओलंपिक मेडल्स, दैट्स द यू नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है यहां पर चल रही है. बट मोटर स्पोर्ट के फैंस, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द मोटर स्पोर्ट सिटी जो है जो प्लान किया जा रहा है विद एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेस ट्रैक केपेबल ऑफ होस्टिंग F1, F2, F3 एंड F4 के रेसेस अलॉन्ग विद ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू डिस्कवर एंड डेवलप यंग रेसिंग टैलेंट एज वेल. तमिलनाडु जो है ऑलरेडी इट has a strong, very very strong in fact motorsport ka base with the Madras International Circuit near Chennai and Kari Motor Speedway in Coimbatore. So ye jo naya project hai could take things ek dusre hi level par altogether. And imagine this, Formula One in Chennai. Okay, I mean abhi wo dream stage par hai, but F1 race hasn't been confirmed of course, but India is separately exploring a Formula One ka return and National Sports Ministry has been looking at the possibility of bringing it back by 2028. So yes, Italy filter coffee aur Marina Beach ke saath someday Formula One ka vroom vroom bhi Chennai mein aapko sunne ko milega. That would be quite a combination, isn't it? Amazing. चलिए फ्यूचर में इंजन्स जो है वो डेफिनेटली वहां पर रोर करेंगे. आई एम टोटली एंड वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. फिलहाल अपने अपने हेडफोन स्पीकर्स को रोर करने देते हैं क्योंकि गाने आने वाले, इतने अच्छे गाने प्ले कर रही हूं तो बनता तो है ना. गुड मॉर्निंग.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching?
1: Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
4: It's a musty partner event.
0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
5: इश्क सूफियाना से कुछ याद है। आई हैव गॉट दिस रियली इंटरेस्टिंग गेम फॉर यू। ओके, एंड बिल्कुल अपने कानों को तैयार कर दीजिए एंड लेट मी सी दैट वेदर यू कैन क्रैक दिस और नॉट। Alright, are you ready? 9 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। सो वेल ऑफकोर्स इश्क सूफियाना के अभी यहाँ पे एड चल रहा था। सो ऑल द सूफी म्यूजिक लवर्स, इट इज दिस वन प्लेस इज जस्ट फॉर यू। एक ऐसी शाम जहां पर यू आर जस्ट काइंड ऑफ सिटिंग बैक रिलैक्सिंग एंड लेट द म्यूजिक टेक ओवर। परम स्वरम आर्ट्स जो है ला रहे हैं हमारा इश्क सूफी। अमित धमेलिया जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव मेट आल्सो। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द मस्ती फैमिली फॉर सो सच अ वेरी बिग गुड लॉन्ग टाइम। मस्ती शोकेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है हमेशा से ही वो रहे हैं एंड ही ब्रिंग्स दिस ब्यूटिफुल इश्क सूफियाना। दो एडिशन ऑलरेडी ये कर चुके हैं, दिस इज द थर्ड वन एंड देयर इज अ लॉट न्यू व्हिच इज हैपनिंग इन दिस एडिशन एज वेल। सो 26 सितंबर को शाम को 7 बजे से एट द ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब टिसेंसन रोड यहाँ पे होने वाला है। नाउ टिकट्स आर प्राइस्ड एट $60 and $80 एंड यू कैन बुक योर्स बाय जस्ट डूइंग अ पे नाउ एट 8138279 0। बट द ट्विस्ट कम्स है, अगर आप हमसे जीतना चाहते हैं यहाँ पे जाने के टिकट इश्क सूफियाना को अटेंड करने के लिए, देन ओके व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट चांस। मैं आपको एक काफी पॉपुलर जो है गाने के कुछ लाइंस इंग्लिश में ट्रांसलेटेड लाइंस आपको बताने वाली हूँ। यू हैव टू गेस ओके विच सॉन्ग एम आई टॉकिंग अबाउट। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सूफी गाना बट यू नीड टू टेल मी कि ये कौन सा गाना है। रेडी ऑलराइट हियर वी गो। आई विल लिव विद योर नेम एंड आई विल डाई विद योर नेम। आई विल डू वट एवर इट टेक्स To attain your love, what have you done to me? I am dying. I am completely lost. I have become your crazy lover. मैं ना अपने आप को रोक रही हूँ क्योंकि ओरिजिनल ट्यून जो है ना मेरे दिमाग में चल रहा है एंड आई एम ऑलमोस्ट इट हैपेंस राइट। मैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उस गाने के धुन में ही ऑलमोस्ट मैंने नहीं अंतरा नहीं यू कैन नॉट गिव इट अवे बिकॉज यू नीड टू टेल मी ये कौन सा हिंदी सूफी गाना है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सो इफ यू नो द सॉन्ग हमें जवाब दे दे 9158963 पर एंड दिस हैज चांस टू विन टिकट्स टू इश्क सूफी गाना। है ना मजेदार रहा। अगर आपने जस्ट इन केस मिस कर दिया लेट मी नो, आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम फॉर यू बट बताना पड़ेगा आपको। ऑलराइट गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: ना जाने कोई ना जाने कोई रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रैफिक के साथ। यहाँ पर जो है पहले ट्रैफिक अपडेट दूंगी और थोड़ी देर पहले जो सवाल पूछा था उसको रिपीट करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि उन्होंने सही गाना कैस किया है, बट दैट इज नॉट द केस। वेल एनीवेज, कमिंग बैक टू द ट्रैफिक अपडेट, रोड वर्क जो है वो चल रहे हैं ऑन KJE टूवर्ड्स PIE, आफ्टर PIE चांगी, अवॉइड करें लेन नंबर 3। रोड वर्क की खबर है ऑन PIE टूवर्ड्स चांगी एट जुरोंग वेस्ट एवेन्यू 2 entrance and milega heavy traffic on PIE towards Achangi between KPE and Topayo exit 16A. So well, ye tha is ghante ka traffic update. Thodi der pehle jo hai maine aap se ek sawal pucha tha, that ek gana hai jiska English translation jo hai wo main aapko batane wali hu. Wo English translation sunkar aapko mujhe batana hai ki ye gana kaun sa hai. Yes, it's a Hindi Sufi gana, but kaun sa hai. So one more time, okay, listen very carefully. I'll live with your name and I'll die with your name. I'll do whatever it takes to attain your love. What have you done to me? I am dying. I'm completely lost. I have become your crazy lover. कौन सा गाना है ये? 9151896 पर बताएं और इश्क सूफियाना के जो है टिकट्स जीतने के मौका पाए बताइए।
3: ओए ओए ओए

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partnered event.
3: We are the sounds of the streets.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: And finally someone got it. Radio Masti 24/7 Antra aapke saath yahan par jo hai chal raha hai Masti ka mantra. Yes, a lot of things are going on over here just now jo hai. Sawal ke jawab kaafi saare logon ke zarur aaye the but sab ke galat aaye the. But there was just one hint which I had to give ki literal translation kar lijiye aur aapko jawab bilkul usi mein bilkul acha sa mil jayega. And yeah, yahan par mujhe koi likh raha hai aapke program bahut badhiya laga, thank you so much. And isiliye to itne badhiya badhiya hum yahan par program karte hain on Radio Masti 24/7. Bhai, it seems that badhiya program to Aamir Khan ka bhi aisa kuch lag raha hai. So well, Aamir Khan is in talks apparently for a superhero film with Sajid Nadiadwala and R. Balki. मैं ना इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ. क्या है ना कि ऐसी सारी चीजें जब हो जाती हैं तो फिर उनको होने देना चाहिए. कौन ही रोक पाया है जब चीजों को जो होना है. सी आमिर खान वाज लास्ट सीन तब जब उन्होंने कहा था कि मैं सबैटिकल ले रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो वो बहुत ज्यादा लंबे की सोच रहे थे बिकॉज देर आर क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि पाइपलाइन में है उनके लिए. Let's see, अब कौन से सुपर हीरो के अवतार में हमें आमिर खान नजर आने वाले हैं. व्हाइल ही फिगर्स दैट आउट एंड व्हाइल वी थिंक दैट ओके ठीक है ब्रिंग इट ऑन, देखते हैं क्या होता है. लेट्स मूव ऑन एंड या म्यूजिकल ब्रेक की ओर बढ़ते हैं. एंड आई विल सी यू जस्ट ब्रेक यू स्मार.
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
0: Aamir Khan wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
4: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
5: Awesome.
6: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind.
0: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
10: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। बट अब अंतरा को लेकर मस्ती का मंत्रा रैप अप करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट बिफोर दैट, अ क्विक कॉल फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव स्टिल नॉट गॉट देयर टिकट्स फॉर सुहानी शाह और उनका शो। भाई मैं तो सिर्फ हर बार नया एक वीडियो आता है और हर बार ही जो है मेरे दिल में क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, दैट आई रियली वॉन्ट टू वॉच हर लाइव। ओके, इनफ हो गया कि देख लिया वीडियो में समझ में आ, बट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट लाइव टू द एक्सटेंट कि अब तो मैं कन्विंस हो गई हूं कि अगर वो मेरे साथ भी कर ले, चलो पढ़ लो मेरा दिमाग, बट आई विल बी माइंड ब्लोन जस्ट लाइक ऑल दोज पीपल शी हैज ब्लोन हर माइंड फॉर। लाइक इट इज कंप्लीटली इनसेन। सो सिस्टिक पर जाए और अपने टिकट जो है वो कराए, और अगर आपको प्रमोशनल डिस्काउंट चाहिए जस्ट इन केस, सुहानी शाह लाइव इन सिंगापुर, वंडरफुल एस्केपेड्स एंड एपिक एनकाउंटर जो लेकर आ रहे हैं 20th of September क्रिदाया पीपल्स थिएटर पे होने वाला है। इट्स अ संडे वाला दिन एंड इट इज द परफेक्ट डे टू जस्ट अटेंड समथिंग अमेजिंग एज दिस वन। बट अगर आपने करना है तो आप हमें जरा लिखकर भेज दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे वे यू कैन गेट यूज द प्रोमो code and get the tickets on discounted price. करिए एंड उसके बाद यस, लेट द मैजिक अनफोल्ड एंड हैपन। फिलहाल के लिए एक तो मैजिकल ट्यूसडे, दैट्स व्हाट आई एम विशिंग फॉर। अभी के लिए यहां से जाती हूँ, आप लीजिए एक ब्रेक एंड देन ऑफ कोर्स नूपुर आज जाएगी मस्ती मॉर्निंग लेकर एंड शाम को वापस से होगी मुलाकात विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से। सो या, सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
1: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh
3: Mehra. राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। Masti Media Academy is now open for admissions. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: प्रणाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beat

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: सो माहौल में ट्रेंड्स तो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस तो चल रहे हैं, लेकिन जो वाइब है हर तरफ वो है गणपति जी की। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि कल से जो गणपति जी का आगमन हो चुका है लोगों के घरों में, इसकी इतनी सारी फुटेजेस एंड वायरल वीडियोस फ्रॉम बॉम्बे, मतलब बहुत कुछ कंटेंट निकल कर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि यार काम वाम करने के थोड़ी ना दिन है, ये तो आराम करने के दिन है, गणपति जी की सेवा करने के दिन है, सेलिब्रेशन करने के दिन है, मिठाइयाँ खाने के दिन है। ओहो, और हमारे ऑफिस में भी कुछ ऐसे ही माहौल है। ऑन दिस नोट मैं आज इनों पर वक्त निकाल कर बहुत सारी बातें बॉलीवुड इनसाइट्स लेकर आ चुकी है ताकि आपकी लाइफ में ये जो एंटरटेनमेंट का सेलिब्रेशन है वो चलता रहे मेरी जान। रेडियो 24

सवाल लाइफ पर मैं आरजे नुपुर, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं दोबारा से थोड़ी सी देर में, रुको जरा, सबर करो।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available, book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: रातों रात डॉलर या पैसा डबल करने वाली स्कीम्स अब हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अब हम ना थोड़े से ज्यादा अवेयर हो चुके हैं और इस मामले में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं कि कोई हमें पागल बनाकर ना चला जाए। डोंट यू थिंक सो? मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि ऐसी स्कीम्स अब दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ अलग तरह से सुनाई जरूर देती है। यू नो व्हाट, रिसेंटली इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई जिसका कॉस्टिंग था बनाने का मात्र 2 करोड़ रुपए। वैसे तो ये मात्र नहीं है, लेकिन हाँ मूवी के मामले में ये बजट बहुत कम था और इसने अभी तक 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है ना वो क्रॉस कर लिया है। इनका तो पैसा डबल ट्रिपल नहीं 100 गुना हो चुका है। एनीवेज, मैं आज जो नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, हर मूवी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती। कुछ पुरानी कहानियां और पुराने जो वो होते हैं ना चमत्कार, हाँ वो दिखाने के लिए भी होती है। एंड ऐसे में एक मूवी निकल कर आई है, हनुमान अंश, जिसमें इंडिया के हिमाचल में रहने वाले नीम करोली बाबा जी, जिनका जिक्र एप्पल के सीईओ और भी मार्क जुकरबर्ग से लेकर बहुत सारे लोगों ने किया है, उनकी एक दास्तां है, राइट? और इन्हें विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा भी बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ऐसी उड़ती उड़ती बातें निकल कर आ रही है कि अगले पार्ट के लिए विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा को भी अपीयरेंस के लिए अप्रोच किया जा सकता है, बट अभी सिर्फ ऐसी बातें निकल कर आ रही है ना। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान।

0: पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरल पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बप्पा मोरिया। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, Open Field beside Holiday Inn 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganesh Utsav 2026.
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: ए जय माताजी, माताजी ना हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हालो

0: सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। डू यू रिमेम्बर कुछ साल पहले हम आपके है कौन मूवी आई थी, तो उसमें हमारी माधुरी दीक्षित ने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी। हाँ भाई, रातों रात वो वायरल हो गई थी। हाँ, और फिर हम दिल दे चुके सनम मूवी आई थी, जिसमें ब्लू या टर्कोइज शेड का ना ऐश्वर्या राय बच्चन ने लहंगा पहना था, और वो भी रातों रात वायरल हो गया था। मतलब ऐसा करते करते करते करते बहुत सारी स्टाइलिंग है जो वायरल होती गई। वहां से दिखाई देता है कि अच्छा, लोग कंटेंट देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका जिक्र करते हैं और उसे अडैप्ट भी कर लेते हैं, राइट? और ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर प्रिंसेस डियाना, राइट, इनका जो जिक्र निकल कर आया है और इनकी रेवेंज ड्रेस, जबकि इन्हें पता चला था इनके जो हस्बैंड है वो इन्हें डिच कर रहे हैं, उनका किसी और से अफेयर है, और उस दौरान जो ये ब्लैक कलर की एक ड्रेस में निकल कर आई थी, आप कह सकते हैं ब्लैक गाउन था, वो जो गाउन है ना, रिवेंज ड्रेस जिसे कहा जाता है, वो ऑक्शन होने वाली है। बाबा रे बाबा, एंड यू कांट इमेजिन, $3 लाख से उसका कॉस्टिंग जो है ना वो शुरू हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। एनीवेज, यहाँ पे शुरू हो चुकी है बहुत सारी बातें एंड गाने रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

0: सुन टकाट।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: ये जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, आप सिंगापुर में बैठे बैठे ले ही नहीं सकते हैं। हाँ, इन कमिंग ईयर्स हो सकता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, बट आई डाउट यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड जब भी इंडिया टूरिज्म की बात आती है तो वहाँ का जम्मू एंड कश्मीर मैप की तरह टॉप पर निकल कर आता है, राइट? एंड वहाँ की जो लेक है डल लेक, राइट, और उसके अंदर फ्लोटिंग आप कह सकते हैं, फ्लोटिंग लाइब्रेरी से लेकर फ्लोटिंग ATM मशीन से लेकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से लेकर फ्लोटिंग हर तरह के वेंडर्स से लेकर अब एक लार्ज फ्लोटिंग स्क्रीन भी इंट्रोड्यूस करी गई है। और इसमें ना पुराने जमाने की बढ़िया से भी बढ़िया जो मूवीज है ना, वो स्क्रीन करी जा रही है ताकि आप लेक में बोट व्यू के साथ उन मूवीज को एंजॉय कर पाए। ओ हो, मतलब ये एक अलग एक्सपीरियंस हो गया, राइट? एंड जब भी हम मूवीज का नाम लेते हैं सिंगापुर में, अगर हम घर पे भी बैठ के अपने होम थिएटर में भी मूवी देख रहे हैं तो साथ में होना चाहिए एक हेल्दी स्नैकिंग, ड्राई फ्रूट्स, राइट, जो कि आप मिड ऑटम सेल में परफेक्टली तरीके से ले सकते हैं GT मार्ट से, केओस 12 वेलोसिटी नोवीना। एंड यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्टीएस्ट सीरीज मिल रही है फ्लेवर्ड एंड क्लासिक ड्राई फ्रूट्स की, जो कि केमिकल फ्री है, हलाल सर्टिफाइड नट्स है, एज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली GT मार्ट केओस 12 वेलोसिटी नोवीना भूलिएगा नहीं। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganeshotsav 2026.

देखो, ट्रेंड सेट करना आसान है और ट्रेंड सेट करते रहना ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट ठीक है, जिसने ट्रेंड सेट किया होता है ना, उनकी अगर आप तारीफ कर देते हैं तो आप भी ट्रेंड के हिस्से ही बन जाते हैं। मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड द पॉइंट इज कि परिणीति चोपड़ा मॉम बनने के बाद अब इंडस्ट्री में कम बैक करने का सोच रही है, सोच के रही है, उनके प्रोजेक्ट्स लाइंड अप भी है। एंड ऐसे में उन्होंने पता है क्या बोला है कि ये जो आफ्टर मॉम कल्चर था ना कि भाई बॉलीवुड आपको कैंसिल कर देगा, ये एक्चुअली में अब हट चुका है। बिकॉज आप दीपिका पादुकोण को देख लीजिए, आलिया भट्ट को देख लीजिए, ये दोनों ही वर्किंग मॉम्स हैं। तो वो वाला जो पॉइंट है ना कि पेरेंट्स बनने के बाद आप इंडस्ट्री में नहीं दिखा सकते या नहीं दिखाई दे सकते अपना टैलेंट, तो ये सारी चीजों को अब लोग जो है वो इग्नोर करने लगे हैं। सी पीपल इग्नोर करते हैं या इन चीजों को और हाईलाइट करते हैं। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. ऑनवर्ड्स CSE ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a Masti Partner event.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टका।
2: जोश में रहो।
0: सुनो सुनो सुनो, आपको ना क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टिकट बुक करानी है 26th of September यानी सैटरडे वाला दिन आपकी छुट्टी है बॉस, बहाने नहीं चलेंगे। एंड आप ना अपना जो वर्किंग लाइफ है ना भूल कर यहाँ जाना, या फिर यहाँ से जब लौटोगे ना तो सब भूल चुके होंगे क्योंकि कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा ना, राइट। सिंगापुर में मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर तो आपसे बात कर रही है, और एक आवाज जिनका सूफी अंदाज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, अमित धामिलिया, राइट। सो इनका एक शो वापस से आ चुका है, परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंट्स इश्क सूफियाना बाय अमित धामिलिया। एंड पिछले इसके जितने भी एडिशंस रहे हैं वो हाउसफुल रहे हैं, तो आपके लिए ये चांस है कि आप भी अपने टिकट्स बुक करा लें। 26 सितंबर सैटरडे वाले दिन 7 to 9 PM ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टेसनसन 6 Old Tessensen Road सिंगापुर। टिकट्स जो हैं वो $60 and $80 में अवेलेबल है। यू कैन कॉल 8138279 मैं आरजे यूनिवर्स मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: आमिर खान वंडर्ड।
4: वाव, लुक, आई कुड हैव थॉट ऑफ एनीथिंग, दैट्स अमेजिंग।
3: सलमान खान वांटेड आंसर्स।
5: कैसे किया ये?
3: आर माधवन सेट।
6: ऑसम, यू आर वेरी गुड यार, वेरी वेल डन।
3: एंड बमन ईरानी।
7: आई से दिस विद ग्रेट रिस्पेक्ट, दिस इज एक्चुअली इट्स ब्लोन माय माइंड।
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: भाई पुराने दिन जीने के लिए कोई फ्लाइट की टिकट करवाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बॉलीवुड सिनेमा उठाकर देख लेना है। और मैं तो कह रही हूँ आने वाले वक्त में मूवीज ही ऐसी प्लान करी जा रही है कि वो आपको बिना टिकट कट करवाए पुराने जमाने में ले जाए। हाँ जी, मैं आरजे अनुपमसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और जब भी बात आती है बॉलीवुड की बेहतरीन और खूबसूरत एक्ट्रेसेस की, तो यार आपको याद होगा 70s में मीना कुमारी, जो कि पाकीज़ा मूवी की वजह से, या काजल मूवी की वजह से, या साहिब बीबी और गुलाम मूवी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और उनकी पर्सनल लाइफ और उनका ये जो जर्नी था 70s के दौरान मूवीज तक पहुंचने का, वो कैसा रहा होगा यार। मतलब आप अगर इमेजिन करोगे ना तो भी इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैं आरजे अनुपमसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि लोग जानना तो चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं जानने में। तो ऐसे में डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने ऑफकोर्स मीना कुमारी जी की बायोपिक मूवी बनाने की ठान ली है। और उसमें एक कॉम्बिनेशन जो सुनी सुनाई बातों में निकल कर आया है वो है सैफ अली खान एंड तृप्ति डिमरी का। राइट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी कुछ प्लान किया जा रहा है। ओ माय गॉड, ये कॉम्बिनेशन तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आरजे अनुपमसी मॉर्निंग शो पर बहुत सारे गानों के बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टिककर सुनना है, बैठे रहना है, मजे करना है और कहीं जाना नहीं है मेरी जान।

0: पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरल पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टक।
2: जोश में रहो।
3: You know what? ये जो जादू होता है ना, जादू, ये बहुत अलग चीज होती है। हाँ, अभी रिसेंटली ही मैंने एक मीम पढ़ा था जिसमें एक ओरिजिनल पिक्चर का इस्तेमाल हुआ था। किसी दुकानदार ने लिखा हुआ था कि उधार एक जादू है, जिसको आप देंगे वो इंसान गायब हो जाएगा। क्या बात है यार। डेफिनेटली ये छोटी सी लाइन आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो लाइफ में ये जो जादू है ये तो होते रहते हैं और इनसे हम काम चलाते रहते हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसा मैजिक जो माइंड रीडिंग कर ले, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कोई सामने वाला बता दे। ये तो करण अर्जुन वाली बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है। अंजी द मेंटलिस्ट सुहानी शाह सिंगापुर में ये करके दिखाई कि मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि आप सोच रहे होंगे कब कहां कैसे, तो 20th September 6 PM ऑनवर्ड्स क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर 308 क्रेटा अय्यर रोड सिंगापुर में होने जा रहा है स्पेल बाउंड शो, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस। इंग्लिश में होस्ट होगा सुहानी शाह, यहाँ आपको एंटरटेन करेंगे। टिकट सिस्टिक सिंगापुर पर अवेलेबल है। मैं आज नुपुर एक जादू करे, एक जादू, छोटा सा जादू, बढ़िया वाला गाना लगा रही हूँ। हाँ, जादू से कम नहीं है ये रेडियो। मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

जब आप और मैं शॉपिंग करने जाते हैं तो दिल से दिमाग से ये तय करके जाते हैं कि ये लेना है, और जब पहुंचते हैं तो क्या क्या लेकर आते हैं, हाय हाय, लिस्ट तो एक पॉइंट के बाद हम किनारे ही रख देते हैं यार। हाँ, ऐसा होता है क्या आपके साथ? पता है ऐसा मैंने कब करना शुरू किया था, जब मैंने नई नई जॉब करनी शुरू करी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीजें मिस करी है ना, वो सारी चीजें मुझे एंजॉय करनी है, और इस चक्कर में मैं अनाप शनाप चीजें खरीद कर आ जाती थी। लेकिन अब तो ठीक है, मन भर गया है यार, अब कुछ मिसिंग पॉइंट ऐसा रहा नहीं है। बाय द टाइम ऐसा लगता है लिस्ट बना कर तो जाना चाहिए। चलिए, बाय द टाइम बॉलीवुड की मूवीज की लिस्ट भी बनती जा रही है। अंजी, रामायण मूवी जो कि अपने बजट और अपनी कास्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 400 करोड़ प्लस का इसका बजट कहा जा रहा है, एंड रणबीर कपूर जो है वो उसमें भगवान राम की तरह नजर आएंगे। अच्छा सुनिए, सुने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इसका जो स्केड्यूल है वो वन डे बिफोर कर दिया गया है। हाँ जी, ऐसे ही अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब का तो पता नहीं, इंडिया में तो ये 6th of November को रिलीज हो जाएगी, बिकॉज दिवाली 8 तारीख को है, तो इसलिए 6th को ये रिलीज हो जाएगी, बट ऑस्ट्रेलिया में ये 5th of November को रिलीज होगी। अब एक दिन पहले सीन क्या है, वजह क्या है, ये चीजें थोड़ी सी अलग है, बट ठीक है, बाय द टाइम प्लान तो किया जा रहा है। मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। रंग रेजा। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.

यू नो व्हाट, एक बहुत बड़ा ऑस्कर अवार्ड तो हमारी मम्मियों को भी जाना चाहिए, बिकॉज उनको पता होता है कि अगर हमारे बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी है ना, तो किस तरह से खिलाई जाए. मतलब अगर आपको लौकी पसंद नहीं है, तो आपकी मम्मा लौकी का ऐसा शीरा बनाएंगी ना, इतना प्यारा शीरा बनाएंगी कि आप उस हलवे को यानी शीरे को हाय हाय राजी खुशी खा लोगे यार. मतलब अगर आप मेरे केस में पूछोगे ना, तो मैं इन चीजों को पसंद नहीं करती थी. फिर मेरी मम्मा ने रायता बना बना कर देना मुझे शुरू किया, और मैं ये सब खाने लगी. हाँ, सो मतलब हर चीज का एक ना नया वर्जन आपका इंतजार कर रहा होता है, जो आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब आज के टाइम पे आपको कोई बोले कि आपको भजन में जाना है, तो आप भजन के नाम से थोड़ा सा पीछे हट जाओगे. लेकिन आपसे कोई बोले कि आपको लाइव भजन जैमिंग में जाना है, एक ऐसा डांस फ्लोर जहां भजन के ऊपर वाइब किया जा रहा है और हर कोई उसे बहुत ही मतलब अच्छे तरह से अपनी दायरे में रहकर उसे एंजॉय कर रहे हैं, सो ऐसा ही एक इनिशिएटिव जो है ना, रियल लाइफ सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर राघव एंड प्राची ने शुरू किया, और ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग निकल कर आया है. बाय द वे, ये एंटरटेनमेंट चलकर सिंगापुर तक आ रहा है. राइट, 26th of September एंगेज थिएटर 2 सनटेक में होने जा रहा है, एन इवनिंग ऑफ भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग शो. तो आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं. सिस्टिक पर जाकर आप अपने टिकट्स बुक कराइए. डेट है 26th of September एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर. बैक स्टेज सिबलिंग शो कर रहा है आपका इंतजार. मैं आरजे अनुपमा सी मॉर्निंग शो पर आपके साथ.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026।

ऐसा होता है अचानक से ना, मतलब नवंबर दिसंबर की शादियों के इनविटेशन आने लगते हैं, ऐसा होता है और ये होना बहुत नॉर्मल है। आप इन चीजों को लेकर ज्यादा हेडक मत रखिए। हाँ, एक चीज का जरूर परेशानी होती है कि क्या कपड़े पहने, कैसे करें। तो देखो, नवंबर दिसंबर जनवरी की शादियों के इनविटेशन आपको आने लगे होंगे, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। सिंगापुर, हाँ जी, शॉपिंग वॉपिंग करना चाहते हो, मन में जरा सी भी इच्छा हो ना, तो आप अपनी वार्डरोब देख लेना और जिस चीज की कमी हो वो आप यहाँ जाकर पूरा कर लेना। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026। हाँ जी, यहाँ शॉपिंग भी होगा, गेम्स भी होंगे, फूड भी होगा, फेस्टिव वाइब्स भी होंगे। 10 AM to 6 PM ये पूरा फेस्टिव बाजार लगने वाला है, जिसमें आप हर तरह के कपड़े, हर तरह के होम डेकोर, गिफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लाइफस्टाइल, फेस्टिव प्रोडक्ट्स, सब कुछ आप ले सकते हैं। कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस भी यहाँ रखी गई हैं, बच्चों के लिए भी अलग एंगेजमेंट एक्टिविटी है, ताकि वो आपको शॉपिंग करते वक्त मतलब परेशान ना करें, बुरा मत मानिएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आप इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, मतलब आप इन सारी चीज़ों में अपना एक स्टार्टअप या एस्टैब्लिश्ड बिजनेस रन करते हैं, तो एक और भी बड़ा मौका है। आपको जनरली जो टेबल्स हैं शोकेस करने के लिए बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीमियम टेबल $100 एंड स्टैंडर्ड टेबल $80 में मिल रही है। सो डेफिनेटली आप कॉल कीजिए फॉर फर्दर डिटेल्स 8330-2518 पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
8: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
9: अच्छा, आपको ब्लू पसंद है या वाइट? आपको ग्रीन पसंद है या पिंक? आपको येलो पसंद है या ऑरेंज? अरे अब ये आपकी चॉइस है ना, मतलब मैं जबरदस्ती आपको डॉट डॉट के ना उनकी चॉइस नहीं बदल सकती कि पसंद करो पसंद करो पसंद करो. मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि नुपुर हमें सब कुछ पसंद है, क्यों ऐसी चॉइसेस के फिल्टर लगाने हैं. हाँ, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. लेकिन जिस दिन से आप ये फिल्टर्स लगाने लगते हैं उस दिन से आप थोड़े और मैच्योर साउंड करने लगते हैं कि मैं तो भाई साहब इतना ही करूँगा और इतना नहीं. So, इसी वजह से सैफ अली खान को करीना बहुत चूजी लगती हैं अपने रोल्स को लेकर. जैसे ही उन्हें किसी मूवी का कोई रोल समझ में नहीं आता तो जो उनके हस्बैंड हैं सैफ अली उन्हें बोल देते हैं कि यार इतनी हार्डकोर भी चूजिंग मत रखो, है ना, जो मिल रहा है करती जाओ. लेकिन करीना ने बोला कि सुनो, मैं कभी तुम्हारे रोल्स चूज करने में तुम्हें इंटरफेयर करती हूँ नहीं ना, तो तुम भी अपनी स्पेस में रहो और मैं भी अपनी स्पेस में रहूंगी. इन बड़े बड़े घरों में ना प्रोफेशनलिज्म को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो जाते हैं ये लोग. मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ थी और बहुत सारी बातें भी हमने कर ली हैं, गप्पे लड़ा लिए हैं और अब मुलाकात होने का वक्त होगा कल. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mehra.
6: Purush nahi. Mahapurush hai. Mahapurush.
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: प्रणाम सत श्री अकाल
1: गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026।
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
2: I love you, रसना।
1: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ब्यूटीफुल
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

Yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो। पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
3: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Mostly top 20 Bollywood chart busters of the week, full on Renuka style. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
4: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है. टेंशन नहीं लेने का. टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन. मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा. जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त. बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजे आएंगे. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
6: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
7: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
8: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सस्रियाकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर एप मेन्यू।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: You don't have to have everything figured out to move forward. I really like this line. क्योंकि हम लाइफ में कितनी बार वेट करते हैं ना फॉर दैट मैजिकल मोमेंट व्हेन सडनली एवरीथिंग विल मेक सेंस। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से। मैं हूँ आपकी अंतरा, यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और धीरे धीरे यहाँ पर हमारी नुपुर और हमारे संघर्ष साथी श्रीधर भी जुड़ते हुए जाएंगे और आप भी, आपकी चिट्ठियां भी हमारे साथ जुड़ते हुए जाएंगी। बस यही बात को लेकर मैं सोच रही थी कि कितनी बार हम सोचते हैं कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, बस समझ आ जाए कि राइट डिसीजन क्या है, बस यही कंफ्यूजन खत्म हो जाए एंड देन आई विल नो व्हाट टू डू। एक्सेप्ट लाइफ रेयरली गिव्स अस दैट लक्जरी। कभी डिसीजंस पहले लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है, कभी बाउंड्री पहले रखनी पड़ती है, गिल्ट बाद में आ जाता है, कभी किसी रिलेशनशिप से थोड़ा पीछे हटना पड़ता है विदाउट नोइंग वेदर यू आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, एंड समटाइम्स दो ऑपोजिट फीलिंग्स एक साथ बिल्कुल सच हो सकती है। यू कैन लव समबडी एंड बी डिसअपॉइंटेड इन देम एज वेल, यू कैन बी हैप्पी फॉर अ फ्रेंड एंड स्टिल फील जेलस, यू कैन वॉन्ट टू हेल्प समवन and still want to say no. You can have a good life and still have something bothering you. Human emotions don't always arrive neatly labeled. Ki hello, main insecurity hoon. Reason number 3 ki wajah se main aayi hoon. Kaash aisa hota nahi. Most of the time we just know something doesn't feel right, but I don't completely understand why am I feeling like that. And that's where conversations help. ये मस्ती दिल से पर यही हमारी कोशिश है। ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स को परफेक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंडशिप्स, वर्क, गिल्ट, जेलसी, बाउंड्रीज या कोई सीमिंगली छोटी सी बात आपके दिमाग से जा नहीं रही, राइट टू अस, नो जजमेंट, नो नेम्स। हमारे लिए आप सिंपली डियर लिसनर और आपके लिए हम डियर मस्ती। व्हाट्सएप 9151896 3। आज भी कुछ लेटर्स खोलेंगे, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। आंसर्स हर बार शायद परफेक्ट ना मिले, बट आर वी लुकिंग फॉर दैट? वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेश POV। सो वेल, चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वो लोग जो दिल की बात जुबा पर ले आते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली दिल की बातें जुबा तक आए ना आए, लेकिन हमारे पास आपके लेटर के थ्रू जरूर आ जाती है। एवरी ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स हम सभी आरजेस अनोनिमस वे से आपके लेटर्स पढ़ते हैं और आप तक जवाब भेजते हैं। खैर, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से, मुझे जो मेरा पार्टनर मिला है ही इज वेरी वेरी वेरी गुड, लेकिन वो कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, तो मेरे पार्टनर में ये दाग है कि वो बिना बताए मुझसे मतलब नाराज हो जाता है और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगने लगती है, तो मैं और ज्यादा सवाल पूछने लगती हूँ और हमारी लड़ाइयां बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट सा है, वो कुछ चीजें पजल की तरह इनके रिश्ते में सॉल्व करना रह गई है। बाय द वे, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? 9151 8963 पे टेक्स्ट करके बताना। आप तो अपना जवाब बता देंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट का जवाब है अगला गाना।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम अगेन टू डियर मस्ती दिल से, दिस इज योर संघर्ष साथी श्रीधर एंड हैप्पी टू बी बैक अगेन विद द लवली अंशा एंड I want to hand over the baton as quickly as possible to Antra. कि मेरा English is not that good. पर इससे भी और डरावना बात ये है कि शादी के बारे में. तो I had a very interesting topic that I want to come into in this episode. Antra, to you before I go into the topic in detail.
2: Yes, ये है dear मस्ती दिल से. मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ along with संघर्ष साथी श्रीधर. Now already he has teased the topic and I know a lot of us would be interested to know that ये क्या केस है जो शादी से related है. श्रीधर, let's just get into it.
1: Very interesting, क्योंकि ये बंदा जो है call किया and बोला कि I'm very scared of marriage. मैंने बोला भाई मैरिज हुआ है कि होने वाला है? से नहीं, होने वाला है, आई एम स्कैर्ड. बोला यार शादी के बाद भी आई एम स्कैर्ड, तो व्हाई आर यू वरीड? इट वाज वेरी डिफरेंट. फिर ही सेड नहीं, उसकी दो तीन बार शादी कैंसिल हुई थी, मतलब एंगेजमेंट के बाद ही कैंसिल द वेडिंग. एंड आई हैड आस्क्ड हिम क्यों, प्रॉब्लम क्या था एंड what was the reason he cancelled, is it the family was not good? He said nahi nahi, un sab mein problem hi nahi hai, problem mere mein hai, main shaadi se bahut dalta hu. So and to the point he about half a kilometer before he went to their house he would stop the car and he would go back. To the point he had palpitations, wo you know driving karte waqt his hands were shaking. So I was like yaar shaadi पता नहीं किससे शादी कर रहा है. But that was, that's where the topic stopped. And it was very unique, very interesting for me. But someone's problem is a problem, right? Especially if it affects the day-to-day work. So that's where it was interesting conversation. I'd like to share more what we did. Because there's no custom solution for this.
2: And that is so very true. Like when we talk about marriage, and this is like getting that cold feet. जब एकदम उसके बहुत पास आ जाते हैं, and then you think कि I don't know whether this is the right thing to do. और ये उस तरह के सवाल है श्रीधर, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में आते हैं, but they are not very open asking it. Because उनको ये लगता है कि अगर मैं बोलूंगा they will judge me. So I am really keen to find out that क्या आप लोगों ने suggest किया उसको, what perspective did you give, how to deal with this last minute emotion and anxiety जो वो feel कर रहा है. So let us come back on dear masti dil se, जहां पर कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई judgment नहीं है. We are just here to talk about these feelings which usually people are like नहीं यार रहने देते हैं, नहीं ही पूछते हैं. या सो स्टे ट्यून्ड.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: Raaz ki baat batau, meri awaaz kabhi achhi thi hi nahi.
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: शादी का लड्डू कहते हैं, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। बट आज का जो ये केस है जो हमारे संघर्ष साथी श्रीधर यहाँ पर लेकर आए हैं, आई एम श्योर ये फीलिंग बहुत सारे लोगों ने फील कर रखी होगी। वेलकम बैक डियर मस्ती दिल से। यस, ये वही शो है जहां पर हम ये सारी बातों की, इन हर इमोशन को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड वी से दैट एवरी सिंगल थिंग यू फील इज वेरी very important and you can feel free to share it with us over here. मैं अंतरा यहाँ पर, and श्रीधर ने अभी थोड़ी देर पहले एक उनके पास जो केस आया उसके बारे में डिस्कस किया, where this guy gets that last minute जो है भाग जाता है वो, जैसे ही शादी का नाम आता है and वो बहुत करीब पहुंचता ही he just runs away. But why is he not able to take that step, that final step? Why that anxiety is happening? Sridhar, welcome back. And what, like, aise insan ko kya aapne suggest kiya?
2: First, Santra, we had to find out what was the cause of this fear. And okay, he went back to his own parents. Kyunki har roz jhagda ho raha tha ghar pe. So, it was a very टेंस एनवायरनमेंट एवरी डे, पता नहीं कब पटाखा फूटने वाला है। तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वाज रीसेंट, ही वाज वेरी स्कैर्ड एंड ही आल्सो सॉ सो मेनी न्यूज अबाउट द गर्ल किलिंग द गाय एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें भी थोड़ा असर पड़ा था उसपे, तो दैट वाज अ रीजन। तो जब हमने ये रीजन पता, व्हेन वी गॉट टू नो द रीजन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू ट्रीट हिज एंग्जायटी। मतलब the reason he was getting scared is because he was overthinking way back into the past. So uske liye humne ek choti si exercise ki thi to come back to the present moment, and a small mindfulness technique, I call it as anchoring. Kabhi ho sake to I can do it on the show and guide you people. But we did that little bit of exercise. Uske baad na we did a bit of research on the current state of marriage. How many people get married? How many people actually are having fights? And we did discover the first year of marriage is always good. The years 3 to 5 or 3 to 7 usually have a lot of arguments, and subsequently after that people understand each other and they compromise or they give in, give and take comes into picture, and it tends to even out and

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, चलते चलते वापस से अब आपकी यात्रा की बारी यहाँ पर आ चुकी है। अगली चिट्ठी में एक फ्रेंडशिप है जो टेक्निकली क्लोज लगती है, बिकॉज दिस फ्रेंड शेयर्स एवरीथिंग, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, फ्रस्ट्रेशंस, बैड डेज, बट हमारे लिसनर ने जो है वो रियलाइज किया है एवरीथिंग में शायद गुड थिंग्स इंक्लूडेड ही नहीं है। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। डियर मस्ती, I have a friend who calls me whenever she's upset, fighting with her husband or having problems at work. I listen for hours and I'm genuinely there for her. But when something good happens in her life, I usually find out through Instagram ya phir kisi aur se. Recently she got some wonderful news and I wasn't even one of the people she told. It made me wonder, am I her friend or have I just become her safe space? Play a safe space for the problems. Is it fair to feel hurt when someone trusts you with their pain but not with their happiness? So my dear listener, see, I understand why this hurts, because ajeeb si baat hai na, usually hum sochte hain kisi ka apna hona means they trust us with the difficult moments, and clearly your friend does. Jab fight hoti hai she calls you, work problem she calls you, she's upset, she's आपके पास आती है। सो समवेयर यू प्रोबेबली थॉट दैट आई एम वन ऑफ हर पीपल एंड देन समथिंग वंडरफुल हैपेंस, और आपको पता चलता है इंस्टाग्राम से। सडनली सवाल सिर्फ उसने मुझे बताया क्यों नहीं, दैट इज द वन, राइट? इट बिकम्स मैं एक्चुअली उसकी लाइफ में हूँ कहाँ, एंड आई थिंक दैट्स द इमोशन अंडरनीथ दिस लेटर। इट्स नॉट रियली अबाउट वॉन्टिंग टू बी द फर्स्ट पर्सन टू हियर एवरी पीस ऑफ गुड न्यूज, राइट? इट्स अबाउट वंडरिंग व्हाई यू सीम टू हैव अ फ्रंट रो सीट टू समवन्स पेन, बट व्हेन हैप्पीनेस अराइव्स योर सीट समहाउ डिसअपीयर्स। बट बिफोर वी डिसाइड व्हाट दैट मीन्स अबाउट दिस फ्रेंडशिप, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक एट अनदर पॉसिबिलिटी टू, बिकॉज पीपल डोंट नेसेसरली शेयर पेन एंड हैप्पीनेस विद द सेम पीपल और इन द सेम वे। So my dear listener, I am not going to answer this yet. Ek chota sa musical break lete hain. I will come back and then I will let you know my perspective. Mere idhar se kaisa dikh raha hai aur kya dikh raha hai. Are you simply her safe space? Is that actually a bad thing? And most importantly, when does being someone's person for problems stop feeling like closeness and start feeling one-sided? Stay with me. This is Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: फॉर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरल पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: अच्छा, जब भी कोई गैजेट बिगड़ जाता है तो हम सबसे पहला सल्यूशन क्या करते हैं? उसको ऑफ करते हैं थोड़ी देर के लिए और ऑन कर लेते हैं, या फिर रीबूट करते हैं फिर थोड़ी देर बाद ऑन कर लेते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि रिश्तों में भी ऐसा चलता है, थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड थोड़ी देर पहले मेरे हाथों में एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे पार्टनर के अंदर सब कुछ अच्छा है, लेकिन चांद में दाग की तरह एक छोटी सी कमी है कि वो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, और जब वो नाराज होता है तो मैं और ज्यादा नाराज हो जाती हूँ, फिर सिचुएशन खराब हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? So, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में एक छोटा सा पॉज ढूंढना है। यू नो व्हाट, मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। इसलिए नाराज नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बात का बुरा लगता है, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, फिर तीसरी बात उनके मन में आ रही होती है और सब कुछ पजल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हैं ना, उन्हें उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उनको थोड़ी सी स्पेस दे दो, और थोड़ी देर बाद ही एक जेन्युइन केयर दिखाते हुए कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी कुछ तो बनाकर दे दो, और उस तरीके से, उस बहाने से बात करना शुरू कर दो। आई बेट यू ऐसे लोग ना देखते ही देखते पिघल जाते हैं बॉस, और आपको लगेगा कि वाओ, हाँ जी नुपुर का जवाब तो यही होगा इस सिचुएशन पे। पर हाँ, और भी बहुत सारे सवाल डियर मस्ती दिल से शो पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर में साथ में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे उनके जवाब। मीनवाइल मैं आरजे नुपुर आपके लिए लगा रही है ये

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
4: It's a Masti Partner event.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं आपकी आंत्रा यहाँ पर वापस से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और यूजुअली इस शो में आप मुझे अपनी सिचुएशंस भेजते हैं और मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ हम सभी यहाँ पर। आज थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं। आज सिचुएशन मेरी है बट मुझे इसमें आपका पर्सपेक्टिव चाहिए। सो हैव आई गो। So we were a group of four girlfriends, okay? हम सब close थे, but obviously groups में भी किसी से थोड़ा ज़्यादा closeness होती है, थोड़ी सी किसी से कम closeness होती है। At some point, two of them had a misunderstanding and miscommunication, and eventually there was a big rift between them. So nobody asked me to choose sides कि नहीं तू मेरी तरफ या मेरी तरफ, right? But sometime later, I was having people over at my house. So different circles थे, तो मैंने तीन different batches में लोगों को इनवाइट किया एंड बिकॉज दीज टू वर नॉट गेटिंग अलोंग आई इनवाइटेड देम सेपरेटली। मुझे लगा आई वाज एक्चुअली अवॉइडिंग एक ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए, बट वन ऑफ देम वाज डीपली हर्ट एंड शी क्लियरली टोल्ड मी आई वैल्यू लॉयल्टी मोर देन एनीथिंग। आई थॉट यू वर ऑन माई साइड एंड ऑनेस्टली आई वॉज शॉक्ड। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट था लॉयल्टी side? I mean, I have to prove all of this? Are we still in school? And somewhere I also felt, dost hai tu meri, right? Don't you already know what you mean to me? But that one incident changed something between us. We never really had a proper closure. Aaj bhi kabhi kabhi formal messages jo hai exchange hote hain, birthdays and occasions and but we are not friends the way we used to be. And I'll admit it, I miss her, okay? I miss talking to her, I miss her presence. Recently, mujhe suddenly laga, why don't I just go and meet her one day? Hai na? No big discussion planned, ya, you know, no, aisa kuch nahi bolna hai mujhe ki we need to talk karke. Bas jau, milu, and maybe somehow refresh, reset, and start again. But I wonder, should I? या जो रिलेशनशिप नेचुरली दूर चला गया उसे वही रहने देना चाहिए। सो टुडे माय डियर लिसनर्स आई रियली नीड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अगर आप मेरी जगह होते वुड यू गो, वुड यू रीच आउट एंड गिव एन ओल्ड फ्रेंडशिप वन मोर चांस, या कहेंगे कि यार अंतरा रहने दे यार, सम फ्रेंडशिप्स आर बेटर लेफ्ट वेयर दे एंडेड। टेल मी व्हाट यू वुड डू 9151896। आज मैं आंसर नहीं दे रही है, आप जो बोलोगे ना मैं आप सच्ची में सीरियसली कंसिडर करूंगी। ये है डियर मस्ती दिल से और रेडियो मस्ती 24/7।

0: इस दिन मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: No.
0: यार इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: I don't know.
0: देख अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बैड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऐसा होता है ना कि हम चीटी बराबर प्रॉब्लम को ना हाथी बराबर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, डोंट यू थिंक सो? डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड थोड़ी देर पहले मेरे हाथों में जो लेटर आया, मुझे लग रहा है कि इसका भी कुछ ऐसे ही हिसाब है। चीटी बराबर दिक्कत है और इसे पहाड़ बराबर ना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सो जिनका लेटर मुझे आया था उन्होंने लिखा है कि हाय, मेरी पार्टनर जब भी ऑफिस से आती है ना तो मैं उसका फोन रेगुलर चेक करता हूँ, हर तरह से चेक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी उसके मोबाइल फोन पे कुछ और मिला हो, बट हाँ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मैं सेफ साइड चलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं उनको बता दूं, आप सेफ साइड तो चल रहे हैं लेकिन डोंट यू थिंक सो कि आप किसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं? हाँ अच्छा, कोई आपसे एकदम लॉयल है और आप लगातार उस पर शक कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि उसे पता भी नहीं चल रहा है, पर आप क्या खुद से खुद की नजरें मिला पा रहे हैं? चलो ठीक है, ये सारी बातें भी किनारे रख देते हैं। जिस दिन उन्होंने आपके संग ये ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया कि वो हर रोज आपका सेलफोन चेक करें, तो आपको कैसा लगेगा? बस वो फील आप एक बार फील कर लो ना, उसके बाद शायद आप जबरदस्ती ये चीजें ना करो, ठीक है?
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।
1: बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर ऐसे ही बड़ी सारी बातें और बड़े सारे सवाल और जवाब कर रहे हैं अनॉनिमस तरह से आपका इंतजार। डियर मस्ती दिल से शो।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सभी का वापस से स्वागत करती हुई मैं आपकी अंतरा ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, और अगली चिट्ठी चलिए साथ में पढ़ते हैं फिर समझते हैं। डियर मस्ती, वन पर्सन इन आवर ग्रुप अर्न्स सिग्निफिकेंटली मोर देन द रेस्ट ऑफ अस। ही इज जेनरस एंड ऑफ्टन पेज, बट नाउ आई हैव नोटिस्ड पीपल ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड। समवन, हाल ही में किसी ने ऐसा जोक भी क्रैक किया, व्हाई आर वी स्प्लिटिंग, ये है ना हमारे साथ। He laughed, but I felt uncomfortable. When someone can easily afford something, does that make it okay for everyone else to expect their generosity? Wow, I really get amazed with the kind of emotions यहाँ पर dear musti दिल से show पर जो है महसूस करने को मिलते हैं। So my dear listener, मेरे लिए इसका जवाब काफी blunt है, which is no. किसी के पास ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली हमारा उस पर ज्यादा हक हो गया है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन ही लव्स ट्रीटिंग अस एंड ही विल पे। पहले में जेनरोसिटी भी है, दूसरे में एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन क्वाइटली एंटाइटलमेंट बन सकता है। हाँ, मे बी ही लाफ्ड एट दैट जोक, मे बी ही जेन्युइनली डजंट माइंड पेइंग, मे बी फॉर हिम द अमाउंट इजंट इवन significant as well, but that's not really the point, is it? The point is choice kisi ki honi chahiye, uski, right? If he says, guys, this one's on me, fantastic, thank him, enjoy it, next time chai hi sahi, but aap offer kar dena, theek hai? But bill aate hi sabka suddenly phone check karna shuru ho jaye ki are wo to hai na, he will take care, that's not friendship, that's another thing. People who are naturally generous, right, sometimes find it very difficult to suddenly say that kya aaj hum split kar sakte hain, kyunki unke liye bhi utna hi zyada difficult hai. Come to think about it, once you have created a pattern, people start expecting the pattern, and then saying no can make them feel awkward. So personally, agar main us group mein hoti, I would continue behaving as though we are all paying our own share, ki nahi nahi ye to dutch hai, dutch hai, hum sab apna apna pay kar rahe hain. If he offers, lovely, but never assume. And if someone jokes, then why are we splitting? He is here. ऐसा करके अगर कोई बोले, तो आप भी मजाक में बोल दो कि अरे उसका salary package हमारा group subscription थोड़ी ना है. Everyone will laugh, but you will make a point. Trust me on that. So, dear listener, generosity is beautiful precisely because it is voluntary. The moment somebody starts feeling they have to give before because they can afford to, it's no longer generosity. Ek obligation ban jata hai. Somebody else has created for them, right? So, whether somebody earns $10 or 10 times more, let them decide what they want to do with what they have. And when they choose to be generous, appreciate it. Don't expect it. Very big difference. Hope this helps.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
4: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।

And with that, we come to an end of another beautiful episode of Dear Masti Dil Se. मैं हूँ अंतरा and आज की conversations काफी अलग-अलग थी, but somewhere they all came back to expectations. नहीं किसी friendship में expectation कि मैं तुम्हारे difficulties में हूँ, क्या तुम्हारी happiness में मेरी जगह है, कहीं friendship और loyalty के बीच सवाल आया, कहीं किसी की generosity धीरे-धीरे दूसरों की expectation बन गई, workplace, marriage, maybe life में बहुत सारी चीजें जो हैं हमें hurt करती हैं, and कहीं पर I think they come from a little gap between मैंने सोचा था and actually हुआ ये. मैंने सोचा था she would tell me, मैंने सोचा था my friend would understand, मैंने सोचा था people wouldn't take my generosity for granted, मैंने सोचा था my colleague would give me credit, and perhaps वो gap hurt करता है when we have three choices: assume, stay silent or communicate. हर बात confrontation नहीं मांगती है, बट हर बात अंदर रखना भी मैच्योरिटी नहीं होती है. समटाइम्स एक सिंपल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कैन सेव अस फ्रॉम 10 क्रिएटिंग 10 डिफरेंट स्टोरीज हमारे खुद के दिमाग में. और आज रोल रिवर्सल में मैंने भी आपसे अपनी फ्रेंडशिप की एक अनफिनिश्ड स्टोरी जो है वो शेयर की. सो थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु रोट टू मी एंड गेव देयर पर्सपेक्टिव. आई हैव टेकन इट वेरी वेरी सिंसियरली एंड लेट्स सी, आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड ऑन अल्टीमेटली what I did and where that situation currently उस time पे होगी. So well, हाँ जी, कभी आप पूछते हैं मैं आंसर करती हूँ, और कभी मैं पूछती हूँ हम पूछते हैं. हमारे संघर्ष साथी जो हैं श्रीधर, वो आते हैं, वो केसेस लाते हैं, अलग अलग पर्स्पेक्टिव एक ही सिचुएशन पे मिलते हैं, and it helps. So keep writing to us, WhatsApp पर 9158963 पर. फिलहाल मैं अंतरा on behalf of Nupur and Sanghash Pasathi Shridhar signing off from Dear Masti Dil Se. और जाते जाते बस इतना, relationships में mind reading से ज्यादा useful एक चीज है talking. Good night.

0: पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बप्पा मोरिया। सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available, book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
3: It's a Masti Partner event.

सिरहाने को छोड़ाया, तोड़ाया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ाया, जाने क्या।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सिंगापुर। मैं हूं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, नाम है मेरा समर और शो का नाम है लेजेंड्स। फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। लेजेंड्स फिर से एक ऐसी महफिल जहां एक बार फिर मैं हिंदी सिनेमा के मशहूर और मारूफ सितारों की फिल्मी जिंदगी के किस्से, कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों के लेकर आ जाता हूं। हाजिर हूं आज भी। आज हम हिंदी सिनेमा की उस फनकार की बात करने वाले हैं जिन्होंने हीरोइन के तौर पर तो रोल कम प्ले किए हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस किसी भी लीड एक्ट्रेस से ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। जिन्होंने अपने करियर में हर टाइप का रोल प्ले किया, चाहे बहन हो, माँ हो, बीवी हो, और हर फिल्म में उनका एक अलग इम्पैक्ट रहा, याद रखा गया उन्हें। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपको याद है, अरे लाजो। अच्छा, आपने टीवी पर स्टार उत्सव पर शरारत तो देखा होगा जिसमें ये नानी बनती है। नहीं देखा तो डीडी मेट्रो पर देख भाई देख तो देखा ही होगा। नहीं ये भी नहीं देखा तो फिर आराधना फिल्म का वो गाना आपको याद है, बागों में बहार है, राजेश खन्ना साहब के साथ जो कहती है हाँ है, और फिर जब वो लास्ट में पूछते हैं तुझे मुझसे प्यार है वो कहती है ना ना ना ना ना ना ना ना, याद आया। हाँ जी वही है हमारी आज की फनकार, वन एंड ओनली फरीदा जलाल।

फिल्मों में अगर आप फीमेल कैरेक्टर एक्टर्स ढूंढेंगे तो फरीदा जलाल का नाम सबसे ऊपर आएगा। न जाने कितने ही किरदार इन्होंने प्ले किए स्क्रीन पर जो अमर हो गए हैं, और आज भी उतने ही दमदार किरदार वो प्ले कर रही हैं। तो आज अभी शो की शुरुआत करते हैं फरीदा जलाल के इन गानों के साथ, और गानों के उस पार करेंगे इनकी फिल्मी जिंदगी की बातें। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो 24/7 लाइव। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। मैं हूं समर आपके साथ।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप।

0: मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है,
1: फिर भी उदासी है
0: कि रात प्यासी है।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September,

0: Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti partner event.
2: Healthy cow protein cow.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy cow protein cow.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
1: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और आज की लेजेंड हैं फरीदा जलाल। 14 मार्च 1949 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ। शुरू से ही मतलब बचपन से ही एक्टिंग का शौक इन्हें रहा। दिल्ली के पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। ये स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर ही रही थी कि फिल्म फेयर ने उस जमाने में एक कॉन्टेस्ट निकाला साहब, जिसमें जो जीतेगा उसे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, ये इनाम था उसका। तो साहब पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी ये तैयारी करने लग गई, क्योंकि एक्टर बनने का शौक तो इन्हें बचपन से ही था। तो फरीदा ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। बहरहाल कॉन्टेस्ट हुआ और ये पहुंच गई फाइनल तक, और अल्टीमेटली इन्होंने फाइनल जीत ही लिया। लेकिन एक और खास बात थी इस कॉन्टेस्ट में, और वो ये कि फरीदा जलाल फीमेल विनर थी और यहाँ एक मेल विनर भी था। वो कौन था जी? वो थे जो बाद में बने सुपरस्टार राजेश खन्ना। या यूं कह सकते हैं कि काका और फरीदा जलाल की फिल्मी जिंदगी एक साल शुरू हुई थी साहब, और फिर बाद में उन्होंने एक साथ काम भी किया। अब जो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का फाइनल था, उसमें फिल्म मेकर ताराचंद बड़जात्या ऑडियंस में बैठे हुए थे। उनको फरीदा जलाल बहुत अच्छी लगी, और साहब दूसरे ही दिन उन्होंने फरीदा जलाल से कॉन्टेक्ट किया कि क्या आप मेरी अगली फिल्म में काम करेंगी। यानी अब सोचिए कि कहां तो वो स्कूल के फाइनल एग्जाम दे रही थी और कहां इस कॉन्टेस्ट के दूसरे दिन फिल्म का ऑफर आ गया, और वो भी राजश्री प्रोडक्शन से। सीधे पड़ जाते हैं साहब का फोन आया। खैर तो मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ने, वरना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है भैया, एक रोल पाने के लिए सालों लग जाते हैं इंडस्ट्री में। तो इन्होंने बिल्कुल धक्का नहीं खाया, और इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद लोग धक्का खाते हुए इनके पास आने लग गए। नहीं उसे धक्का नहीं कहना चाहिए, खिंचाव था इनका कि इनकी तरफ चले आए इनकी एक्टिंग को देखकर। तो सिंगापुर आप ये सोच रहे होंगे कि फरीदा जलाल ने क्या कहा ताराचंद जी से जब उनका फोन आया, तो ये फिल्म साइन किया नहीं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा इस ब्रेक के बाद। आप सुनिए गाने और वापस आइए, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए ताराचंद बड़जात्या ढूंढ रहे थे फरीदा जलाल को। आप सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फरीदा जलाल की कहानी समर की जुबानी।
6: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
7: गलियों पे निखार है?
6: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: हेलो एंड वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ. आज हम फरीदा जलाल की बात करें सिंगापुर. और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि इनके पास ताराचंद बड़जात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या का फोन आया. फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी नेक्स्ट फिल्म में क्या आप काम करेंगी? अब आप सोचे कि जिसका सपना बचपन से एक्टर बनने का हो, उसे फिल्म का ऑफर मिले तो जाहिर सी बात है वो हाँ ही करेगा. पर फरीदा जी ने ये नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये किया और इनको ये फिल्म मिल गई. इनकी पहली फिल्म तकदीर इसका नाम था. अब आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि शायद फिल्म तकदीर की तकदीर में फरीदा जलाल लिखी हुई थी, या फरीदा जलाल की तकदीर में तकदीर लिखी हुई थी. भाई जो भी हो, फिल्म अब चल पड़ी थी और फरीदा जलाल की गाड़ी भी यहाँ से

पहली फिल्म हिट होने के बाद अगले ही साल यानी 1968 में इन्होंने दो बड़े कलाकारों के साथ काम किया। एक तो थे धर्मेंद्र साहब और दूसरी मीना कुमारी जी। फिल्म का नाम था बहारों की मंजिल। वैसे ये फिल्म धर्मेंद्र और मीना कुमारी की आखिरी मूवी थी जो उन्होंने एक साथ की थी। अगर आप फरीदा जलाल की फिल्में देखेंगे जो उन्होंने शुरू शुरू में की, तो ज्यादातर रोल इनको बहन के मिले, यानी ये फिल्म में लीड हीरोइन की बहन बनती थी। फिर फिल्म के हीरो का रिश्ता सबसे पहले इन्हीं के लिए आता था, फिर सगाई होती थी, उसके बाद हीरो को फिल्म की हीरोइन पसंद आ जाती थी, फिर सगाई टूट जाती थी। तो फरीदा जलाल के ज्यादातर रोल इसी तरह के रहे हैं शुरू शुरू में, चाहे वो हीरो की बहन बनती हो या हीरोइन की या फिर किसी की फियांसी। वेल सिंगापुर अभी वक्त है कुछ और गाने सुनने का, और इन गानों के बाद हम बात करेंगे आज की फनकार वर्सटाइल एक्टर फरीदा जलाल की आगे की फिल्मी जिंदगी की। तो आप सुनते रहेगा सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ ये कहानी।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मस्ट 24/7 लाइव बोल लेजेंड्स, फिर से आप सुन रहे हैं, मैं हूं समर, आपके साथ एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं वो स्टाइल एक्ट्रेस फरीदा जलाल की। हमने अब तक फरीदा जलाल की दो फिल्मों की बात की और दोनों हिट रही। 1967 से उनका करियर शुरू हुआ। अब बात करते हैं 69 की। इस साल फरीदा जलाल की वो फिल्म आई जिसमें उनको लीड हीरोइन का रोल मिला पहली बार। अच्छा, ये जो फिल्म थी ना, इसमें एक एक्ट्रेस और भी थी जो ज्यादा बड़े किरदार को निभा रही थी, लेकिन इसमें जो एक्टर था उसका डबल रोल था, तो एक रोल के ऑपोजिट फरीदा जलाल थी और फिल्म थी आराधना और वो हीरो था सुपरस्टार राजेश खन्ना। वही राजेश खन्ना और वही फरीदा जलाल जो एक दिन फिल्म फेयर के फाइनल में एक साथ स्टेज पर खड़े थे, तब कहां इन दोनों को पता होगा कि एक दिन हम एक साथ फिल्म कर रहे होंगे और वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट।
2: तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है।
1: तो साहब, इस फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, बहुत सराही गई और इसीलिए प्रोड्यूसर टीएस मुथुस्वामी ने फरीदा से कांटेक्ट किया। ये एक फिल्म बना रहे थे जिसमें लीड रोल में दिलीप कुमार साहब थे। तो जब मुथुस्वामी ने फरीदा से कहा कि क्या आप मेरी फिल्म में काम करेंगी, इसमें आपका बहन का रोल है, फिल्म के हीरो की बहन बनना है आपको, तो फरीदा जी ने इनसे पूछा कि हीरो कौन है, तो उन्होंने कहा यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब। बस इतना सुनना था कि फरीदा ने झट से हाँ कर दी। फरीदा एक इंटरव्यू में बताती है कि मेरा ड्रीम था दिलीप साहब के साथ काम करना, मैं उन्हें रियल लाइफ में देखना चाहती थी, ऑब्जर्व करना चाहती थी कि ये कैसा आदमी है, कैसे काम करते हैं ये, और मेरा ये सपना मुथुस्वामी जी ने पूरा किया। फिल्म में इनका रोल बहुत ही कमाल का था, फिल्म भी बेहद कमाल की थी। ओम प्रकाश, दिलीप कुमार सबने जबरदस्त एक्टिंग की इस फिल्म में। तो आप देखिए, लीड हीरोइन का रोल नहीं मिल रहा था ज्यादा इन्हें, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में वो काम कर रही थी और वो भी बड़े बड़े हीरोज के साथ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब के साथ ये काम कर चुकी थी। और गोपी से, जिस फिल्म का मैं अभी जिक्र कर रहा था, इनका करियर और भी ऊंचा उठ गया। तो फिर इतना अच्छा करियर कहां तक गया, कौन कौन सी फिल्में की फरीदा ने जिसमें उनके काम ने लोगों के दिलों में जगह बना ली, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, बयां करेंगे आगे की कहानी। आप रहिएगा समर के साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: रेडियो मंजरी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। हिंदी सिनेमा के सितारों की कहानी यहाँ आप सुनते हैं, और आज हमने जिस सितारे को चुना है उसका नाम है फरीदा जलाल। फरीदा के नाम के आगे ये जो जलाल लगा हुआ है ना, दरअसल ये नाम उनकी नानी ने रखा था, क्योंकि उनके चचेरे भाई यानी नानी के चचेरे भाई उनका नाम था जलाल, और वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे, एक रुतबा हुआ करता था साहब उनका। तो इसीलिए नानी ने फिर फरीदा के आगे जलाल लगा दिया, क्योंकि बचपन फरीदा ने अपनी नानी के यहीं बिताया। तो बहरहाल दिलीप साहब के साथ फिल्म गोभी करने के बाद 1971 में एक बार फिर राजेश खन्ना साहब के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की, और फिल्म का नाम था इस बार अमर प्रेम। यहाँ ये विनोद मेहरा की बीवी बनी है। हालांकि फिल्म में शर्मिला का काम ज्यादा था, लेकिन फिर भी फरीदा का काम भी काफी कमाल का था और ये सराहा गया। लेकिन फिर इस साल इनकी वो फिल्म आई जिसमें इन्होंने बता दिया कि एक एक्टर के लिए उनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। ये फिल्म थी पारस, जिसमें इनके साथ थे संजीव कुमार साहब। यहाँ भी ये संजीव कुमार की बहन

अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा इसमें विलेन बने हैं। ये दोनों भाई बहन गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ ठाकुर अर्जुन सिंह जो कि शत्रुघ्न सिन्हा होते हैं वो इन्हें परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये परेशानी खत्म नहीं होती, शहर आकर भी एक मर्डर ये देख लेते हैं और फिर कोर्ट में गवाह बन जाते हैं। बस इसी बीच फरीदा जलाल का रेप हो जाता है, इनका भाई किसी दूसरे शहर चला जाता है और लास्ट में जब दोनों वापस मिलते हैं तो वो फरीदा जलाल को पहचानने से मना कर देता है। तो सिंगापुर कभी मौका मिले तो आप इस फिल्म को देखिएगा, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही है इसमें फरीदा जलाल की और इस परफॉर्मेंस के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फरीदा जलाल की परफॉर्मेंस के बाद अब टाइम है कुछ और गाने सुनने का उन्हीं की फिल्मों से। आपको ये गाने सुनवाते हैं, आप रहिएगा समर के साथ। फरीदा जलाल की कहानी आप सुन रहे हैं रेडियो 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव। आपने ट्यून इन किया हुआ है और मैं सिंगापुर के इस एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन से आपका इस्तकबाल कर रहा हूं। मेरा नाम है समर, समर लेजेंड्स वाला, और शो का नाम यही है लेजेंड्स फिर से। आज हम बात कर रहे हैं फरीदा जलाल की। 1971 के बाद फरीदा जलाल ने टॉप परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया था, और ऐसा नहीं था कि अगर सपोर्टिंग रोल मिल रहे थे तो कोई गाना उन पर नहीं पिक्चराइज होता था। बहुत सारे गाने उन पर फिल्माए गए थे। फिल्म पारस के बाद एक और फिल्म आई जिसमें उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, और वो फिल्म थी 72 में आई थी फिल्म, और वो फिल्म थी बॉबी। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी। राज साहब का डायरेक्शन और ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में ये एक पैसे वाले बाप की बेटी का रोल करती हैं, लेकिन ये मेंटली चैलेंज्ड हैं। पिंचू कपूर इसमें इनके पिता बने, और जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने हीरो की फियांसी का भी रोल किया बहुत सारी फिल्मों में, और होता यह था कि हीरो इनको अक्सर छोड़ दिया करता था हीरोइन से शादी करने के चक्कर में। वैसे ही इसमें भी प्राण साहब जो कि मिस्टर नाथ बने हैं और अपने बेटे राजू यानी राज यानी ऋषि कपूर साहब की सगाई इनसे कर देते हैं ताकि वो पिंचू कपूर से रिश्ता रख सकें, बिजनेस रिलेशनशिप, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आखिर में ऋषि कपूर साहब सगाई तोड़ देते हैं, तो फरीदा जलाल की मेंटली चैलेंज वाली परफॉर्मेंस इस फिल्म में बेहद कमाल की रही।
2: मैं बॉबी से प्यार करता हूं। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। जानते भी हो कि प्यार क्या होता है और किससे किया जाता है। पहले नाले की गंदगी उठाकर हमारे मुंह पर पोंछ दी, अब लाकर घर में भर लेंगे, हम खड़े देखते रहेंगे।
1: वेल, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, आप सुनिए इन गानों को, फिर मिलते हैं इन गानों के बाद। फरीदा जलाल की ये कहानी जारी रहेगी रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event.
2: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
3: लीजिए एक बार दोनों बाहें फैलाकर फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं आपका समर। मेरा नाम है रेडियो मसी 24/7 लाइव और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। अच्छा आप सुन तो रहे हैं और मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, हमारा ये बदला हुआ अंदाज आपको कैसा लग रहा है। हमारे फेसबुक पेज पर आकर अपने दिल की बात दिल खोल कर लिखे वहां पर। फिलहाल हम फरीदा जलाल की बात कर रहे हैं, आज वही है हमारी आज की लेजेंड। तो मैं आपको बता दूं कि फरीदा जलाल जी ने अब तक लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में निभाया हुआ इनका किरदार आज भी याद किया जाता है। हमने बात की 72 में आई फिल्म बॉबी में इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे राजा रानी, इसमें एक बार फिर से आराधना वाली कास्ट थी, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के साथ थे और ये फिल्म 73 में आई थी। और इसी साल एक और मूवी आई जीवन रेखा, इस फिल्म में एक नए एक्टर थे तबरेज। रियल लाइफ में जीवन रेखा चली नहीं, लेकिन इन दोनों की रियल लाइफ की जीवन रेखा सुपरहिट हो गई। मतलब इस फिल्म के बाद ये दोनों फरीदा जलाल और तबरेज साहब एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर आगे चलकर 1978 में इन दोनों ने शादी कर ली। अच्छा इसी बीच उन्होंने कई और फिल्में की जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया, जिनमें मजबूर का नाम मैं जरूर लूंगा। ये फिल्म सलीम जावेद साहब ने लिखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे, परवीन बॉबी इनके साथ थी और अमिताभ बच्चन की बहन बनी है, ये व्हीलचेयर पर रहती हैं, यानी फिजिकली चैलेंज वुमन का किरदार इन्होंने प्ले किया। जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी रही और इसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए ये नॉमिनेट भी हुई। और इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब का फरीदा के साथ यानी अपनी बहन के साथ पिक्चराइज एक गाना बड़ा हिट हुआ और वो गाना ये था।

कुल मिलाकर मजबूर एक अच्छी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन साहब के साथ इस फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो फरीदा जलाल कहती हैं कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इसके बाद भी इन्होंने कई और फिल्में की, लेकिन एक और फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा जिसमें इनकी परफॉर्मेंस देखने लायक थी, वो थी फिरोज खान के डायरेक्शन में आई धर्मात्मा। इस फिल्म में भी एक बार फिर से ये हीरो की बहन बनती है, यानी फिरोज खान साहब की बहन बनी है। मोना इनके कैरेक्टर का नाम होता है। हालांकि ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, एक से बढ़कर एक एक्टर इस फिल्म में थे, लेकिन फिर भी फरीदा जलाल की एक्टिंग वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रही। तो अभी काम करते हैं, सिंगापुर फरीदा जलाल की कहानी जारी रहेगी, लेकिन अभी ये कुछ बेहतरीन नगमे हैं जो उन्हीं की फिल्मों से हमने लिए हैं, ये आप तक हम पहुंचा देते हैं। इन गानों में फरीदा जलाल को आप महसूस कीजिएगा, हम लौट कर आ जाएंगे। तब तक आप सुनते रहिएगा रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर, ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: बताओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: गणपति बप्पा
1: मोरिया, तैयार हो सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा, 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn, 2 Owen Road, Farrer Park, महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026।

देख।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी आपके अपने समर लेजेंड्स वाला के साथ। और समर लेजेंड्स वाला देखिए मेरा नाम पूरा ये नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, मैं लेजेंड्स करते करते इसी नाम से मशहूर हो गया हूं। तो आज मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना, हाँ मैं आज फरीदा जलाल की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। अब हम सीधे चलते हैं 1978 में, जब इन्होंने शादी की इसी साल, और इस साल इनकी वो फिल्म भी आई जिसको देखकर श्याम बेनेगल साहब ने इनको एक फिल्म प्रपोज की, लेकिन वो आगे की बात है, वो 94 की बात है। इस साल जो इनकी फिल्म आई वो थी शतरंज के खिलाड़ी। वैसे इस फिल्म में जितने भी एक्टर थे उन सब की ये फेवरेट फिल्म रही है, और इसमें फरीदा जलाल का निभाया हुआ नफीसा का कैरेक्टर कमाल का रहा। इसमें इन्होंने सईद जाफरी, जिन्होंने मीर रोशन अली साहब का रोल प्ले किया था, उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया। फिर इसके बाद याराना में फिर से अमिताभ बच्चन के साथ ही आई, इसमें ये नर्स बनी, छोटा सा रोल था। पर देखिए क्या होता है कहीं ना कहीं ये बात सच है कि एक अच्छा एक्टर जब भी कोई सिंपल या छोटा रोल भी करता है तो उस रोल का उसकी इमेज पर असर पड़ता है। शायद यही वजह रही होगी फरीदा जलाल की कि इन्होंने सपोर्टिंग को कभी मना नहीं किया, और फिर ज्यादातर ये सपोर्टिंग रोल ही करती रही। यानी अब तक जैसे कि आपको मेरी बातों से पता लग गया होगा कि ये फिल्म में या तो हीरो की या हीरोइन की बहन बनती थी, और कुछ फिल्मों में इन्होंने नर्स का भी रोल प्ले किया। फिल्म याराना जो 1981 में आई थी, उसके बाद इन्होंने फिल्मों से एक ब्रेक ले लिया। उसका एक रीजन ये था कि इनके हस्बैंड ने बेंगलोर में एक सोप की फैक्ट्री डाली थी, तो फिर इनको बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा उनके साथ। तो इस तरह फर्स्ट इनिंग्स इनकी बेहद कमाल की रही, लेकिन सेकंड इनिंग्स भी इन्होंने शुरू की। वो कब की, किससे की, कौन सी फिल्म थी या कौन सा सीरियल था, हम उसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो 24/7 लाइव, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
8: हेलो जी एंड वेलकम बैक रेडियो मजी 24/7 लाइव पर. आप समर के साथ हैं, लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं और आज हम इस शो में आपको फरीदा जलाल की कहानी सुना रहे हैं, उन्हीं के फिल्मी जिंदगी के किस्से आप तक पहुंचा रहे हैं. तो अब तक हमने बात की थी फरीदा जलाल की फिल्मी जिंदगी की फर्स्ट इनिंग्स की. इसमें इन्होंने ज्यादातर बहन के रोल प्ले किए थे, लेकिन जो दूसरी इनिंग्स इन्होंने शुरू की, इसमें इन्होंने माँ के रोल करने शुरू कर दिए और एक से बढ़कर एक रोल किया इन्होंने. यानी अगर आप हिंदी सिनेमा में माँ के रोल को देखेंगे तो निरूपा रॉय के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो इन्हीं का होगा, फरीदा जलाल का. 1991 में आई हिना. राज साहब यानी राज कपूर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट थी ये फिल्म. इस फिल्म की शूटिंग के बीच में ही राज साहब की एक लंबी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी. तो जब राज साहब ने फरीदा जी से कांटेक्ट किया था इस फिल्म के लिए काम करने के लिए, तो फरीदा जी ने तुरंत हां कर दी थी, क्योंकि वो एक बार पहले भी उनके साथ काम कर चुकी थी बॉबी फिल्म में. अच्छा, इस फिल्म में हिना में ये हीरोइन की माँ बनी है. बेहद कमाल का रोल इन्होंने प्ले किया है. और कभी आप फरीदा जलाल की फिल्म देखेंगे तो ये बहुत जल्दी बोलती है, लेकिन साफ बोलती है और वो सुनने में अच्छा भी लगता है.
9: खबरदार, जो माँ जैसा पवित्र शब्द अपनी गंदी जबान से निकाला तो जबान किस लूंगी तेरी. आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ हूँ. आज इन हाथों ने एक नहीं दो दो चिताएं जलाई है. क्या क्या सपने देखे थे मैंने और तेरे दादाजी ने, आज सबके सब राख हो गए उनकी चिता में.
8: हिना में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिल गया उस साल. इसके बाद 1993 में अनिल कपूर की ये मां बनी है. फिल्म का नाम था लाडला. लेकिन इस साल इनकी वो फिल्म आई जो फरीदा जलाल के करियर की सबसे टॉप फिल्म बन गई. इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. मुझे समझ में आ गया है कि आपको भी समझ में आ गया है मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ. लेकिन देखिए, इसी को तो समझदारी कहते हैं कि मैं इधर से इशारा करूं और आप वहां समझ जाएं. रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव सुनने वाले हमेशा समझदारी होते हैं. हाँ, तो मैं बढ़िया तू भी बढ़िया अगला गाने की तरफ बढ़ लेते हैं. आइए सुन लेते हैं इस गाने को. आप हैं समर के साथ, मजे कीजिए ना, मस्ती है, मस्ती करते रहिए.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लेजेंड्स फिर से में एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत। बात करने वाले थे हम उस फिल्म की जो फरीदा जलाल के करियर की माइलस्टोन फिल्म बन गई। ये फिल्म बनाई थी श्याम बेनेगल ने और फिल्म का नाम था मम्मू। आपने जो गैस किया था वो फिल्म नहीं है ना ये? मुझे मालूम था आप सोच रहे होंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म जो थी मम्मू ये कमाल की फिल्म थी। श्याम बेनेगल जब ये फिल्म बना रहे थे तब उनके दिमाग में सीधा एक ही ख्याल आया और वो था फरीदा जलाल का। जब वो फरीदा के पास गए तो फरीदा ने इनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों चुना इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए। तो श्याम बेनेगल साहब ने कहा कि मैंने आपकी दो फिल्में देखी और ये देखकर ही मैंने डिसीजन लिया कि आप इस रोल के लिए फिट रहेंगी। बॉबी और शतरंज के खिलाड़ी ये दो फिल्में थी जो मैंने देखी। वेल ये फिल्म फरीदा ने की और इतनी जबरदस्त एक्टिंग रही कि कोई जवाब ही नहीं इसका। बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला इस फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का। फिर इसके बाद वो फिल्म आई जिसका आप अंदाजा लगाए बैठे थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में लाजू का कैरेक्टर इन्होंने निभाया जो अमरीश पुरी की वाइफ बनी है। जब वो बोलते ना अरे ओ लाजू, तो ये मतलब हर किसी की जुबान पर आ गया था ये डायलॉग। इस फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यानी फिल्मों में माँ के कैरेक्टर का दूसरा नाम फरीदा जलाल हो गया था। आप देखिए सनी देओल की कई फिल्मों में ये माँ बनी है, जैसे सलाखें, जिद्दी, फर्ज और शाहरुख के साथ डुप्लीकेट। इसमें तो बेबी का कैरेक्टर कमाल गई था, आपने देखी नहीं फिल्म? बड़ी कमाल की थी। अच्छा, अजय देवगन की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इसमें ये भगत सिंह की माँ बनी है। इसके बाद तो मैं आपको क्या बताऊँ, हर लगभग दूसरी बड़ी फिल्म में फरीदा जलाल आपको देखी जाएगी। और बड़ी बात यह है कि हर फिल्म में उनका काम अलग ही रहता था। काफी सारे टीवी शोज भी इन्होंने किए, जैसे कि 94 में बड़ा हिट शो था देख भाई देख। इसके अलावा श्रीमती श्रीमती शरारत, ये जिसमें नानी बनी, और काफी लंबे टाइम तक ये शो इन्होंने किया और आज भी ये फिल्मों में एक्टिव है। एक बेटा है इनका यासीन उसका नाम है, जो हालांकि फिल्मों में एक्टिव नहीं है, लेकिन फरीदा जलाल आज भी फिल्मों में उतनी ही एक्टिव है और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही हेल्दी रहें और ऐसे ही हमें एंटरटेन करती रहें। और मैं भी आपको एंटरटेन करूंगा, लेकिन आज का वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है, आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा और कुछ वादे देते जाइए आप मुझे कि आप ये निभाएंगे। तो कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: दस का बीस।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
3: Raat akeli hai. Raat akeli hai to kya? Hum to aap

0: एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग, कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तू न जाने कहां तक पहुंच पाते हम।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: They are fresh. They are hot.
3: वक्त बर्बाद न दिन बाद।
4: They are happening.
5: From rocking the charts to ruling the countdown, ये है मस्ती top 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 p.m. onwards, the latest and the brightest, the week's top chart busters.
1: जोश में रहो।
0: रात अकेली है। रात अकेली है तो क्या? हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
6: We are Indians. किसी से कम नहीं, मेरी बहन, मेरे साथ आ जा, जा, जा, जाएंगे, लड़ेंगे, सबकी बाल बाल बाट लगा देंगे। बाट लगा, बाट लगा, बाट

वालों को धक्का लगता है, चाहे कोई भी मैदान हो, जब घूमता है बल्ला तो बस शक्ल लगता है। कोई रोक के तो सही ना, काम उसका तमाम हो जाए, या तो काम सकर के नाम हो जाए, या तो नाम सकर के काम हो जाए।

0: ऐसे चलते हैं जैसे होते गुलेल हम।
1: I do what I like, I do what I do, कर ले कुछ तू क्यों देखे मेरा मुंह, जब करते हैं aim तो करते ना miss, check my fizz, check my fizz.

0: चल शुरू हो जा।
1: चल शुरू हो जा।

0: रम जो गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है,
1: तो फिर

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: ना तो आज बरसात का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
3: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: अच्छा, आपके संग कभी ऐसा हुआ कि सिंगापुर में किसी भी मॉल या लोकल मार्केट में शॉपिंग करते करते आपकी किसी से मुलाकात हो गई हो, आपके जान पहचान वाले? ऐसा हुआ होगा, वंस इन अ व्हाइल तो ऐसा हुआ होगा, राइट? एंड ये चीजें होना बहुत नॉर्मल है, राइट? लेकिन यार, ये सेलिब्रिटीज कहाँ से शॉपिंग करते हैं कि हमसे नहीं टकरा रहे हैं ये? रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आ चुकी हूँ, पर मसी मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि यार, हम तो शॉपिंग करने चले जाते हैं, लेकिन ये सेलेब्स लोग छिपते छिपाते कहाँ शॉपिंग करने जाते होंगे, या फिर ये भी हमारी तरह ऑनलाइन ऑनलाइन खेलने लगे हैं? एनीवेज, जस्ट अ थॉट है ना, सेलिब्रिटीज को अपनी लाइफ कितनी रिजर्व करके रखनी पड़ती है, कितना कुछ सोचना पड़ता है, दुनिया की नजरों से बचना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओ माय गॉड, अच्छी बात है ना कि आपकी लाइफ में इतने हैसल्स नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी छोटे मोटे हैसल्स तो निपटाए जा सकते हैं। डोंट गो एनीवेयर, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर और भी बहुत सारी बातें करने आ चुकी है। डोंट गो एनीवेयर।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: एक टाइम था जब घर में कोई पूछता था कि सुनो क्या बढ़िया स्पाइसी खाने को बनाया जाए, तो मन में आता था पिज्जा, बर्गर या फिर फ्रेंच फ्राई, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब कोई सिंगापुर में पूछता है ना कि नुपुर तुम्हारे लिए क्या बढ़िया बनाया जाए, तो मैं कह देती हूँ कि बस घर का बना हुआ कुछ बढ़िया खिला दो यार। होती है ना बढ़िया ड्राई फ्रूट्स वाली खीर होती है, ड्राई फ्रूट्स वाले शेक होते हैं, मतलब घर का कुछ हेल्दी खिला दो, बढ़िया खिला दो, नेचुरल खिला दो, दैट्स इट, ताकि मेरी डाइट की डाइट हो जाए और टेस्ट का टेस्ट हो जाए। और अगर आप भी इसी लाइन में आ चुके हैं, मेरी वाली हेल्दी वाली लाइन में आ चुके हैं, तो जरा इधर देखिए, मिड ऑटम सेल चल रही है कहां, जीजी मार्ट में। हां जी, आप विजिट कर सकते हैं केओस्क नंबर 12 वेलोसिटी एट नोवीना सिंगापुर 11th to 25th ऑफ सेप्टेम्बर। आप नेचुरल केमिकल फ्री हलाल सर्टिफाइड नट्स की एन नंबर ऑफ कैटेगरी ले सकते हैं, मतलब आपको वहां पे फेस्टिव के हिसाब से पूरा गिफ्टिंग शिफ्टिंग भी मिल जाएगा, घर के लिए भी मिल जाएगा, और वो कहते हैं ना मतलब हर तरह की वैरायटी जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपको घर से दूर रहते हुए भी घर जैसी फील दे, सब कुछ मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट जीजी मार्ट वेलोसिटी एट नोवीना सिंगापुर केओस्क नंबर 12 आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
3: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching?
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
2: It's a must-be partner event.

0: Oh, I hate making love songs.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: जोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: जोश में रहो।
1: बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी मूवीज आ रही हैं जो अलग अलग लेवल की फैन फॉलोइंग्स रखती हैं, राइट? कोई शाहरुख खान के लिए एक्साइटेड है, कोई सलमान के लिए एक्साइटेड है, कोई रणबीर कपूर की मूवी के लिए एक्साइटेड है। लेकिन भाई एक चौथी कैटेगरी भी है जो कि अजय देवगन के लिए एक्साइटेड है। 2nd October दृश्यम मूवी का 3rd part विद द क्लाइमैक्स एंड टू मच सस्पेंस रिलीज होने वाला है। एक ऐसी फैमिली जो कि कत्ल का जो सस्पेंस है वो बचा कर रख रही है। सो मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको याद दिलाना चाहेगी कि इस मूवी में जो पुलिस वाले थे इससे पहले वो थे अक्षय खन्ना, पर इस बार अक्षय खन्ना जो है ना वो ट्रेलर में नजर नहीं आए। हाँ, इस बार जयदीप अहलावत जो है वो नजर आए हैं, जिनको आपने मिर्जापुर से लेके बहुत सारे सीरीज में देख रखा है। लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्होंने अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं किया है। ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं किया है, पर हाँ उनका रोल काफी नया है, यूनिक है और भी ज्यादा ब्लंट आप कह सकते हैं, राइट? सो ये जो कहानी है ना किसी को किसी से रिप्लेस करने वाली, इसको आजकल थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जा रहा है, बस नाम कैरेक्टर और चीजें बदलकर। मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: आई नो बहुत सारे लोगों को अलग सा झटका लगा है कि भाई इस बार आईफोन्स इतने एक्सपेंसिव कैसे उछल सकते हैं और सोशल मीडिया पे फोल्डेबल फोन्स की जो लहर सी आ गई है, इतने सरकास्टिक मीम्स आ गए हैं, आहा देखने लायक चीज है ये। मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि ये सारी ब्रांड्स तो काम कर ही रही हैं, लेकिन वो एक्टर्स डायरेक्टर्स जो बिजनेस लाइन में नहीं भी उतरे हैं, वो उतरना चाह रहे हैं और अपने रास्ते तलाश रहे हैं। हाँ जी, कुछ वक्त पहले आपने सुना था तमन्ना भाटिया जो है वो ज्वेलरी ब्रांड बना चुकी है और उन्होंने इसका लॉन्च भी कर दिया है। मीनवाइल तृप्ति डिमरी, राइट, तृप्ति डिमरी जो कि इंडिया की अचानक से क्रश बन जाती है, लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, सुनने में आया है कि ये भी एक ब्यूटी ब्रांड में इन्वेस्टर भी बन चुकी है और उसका प्रमोशन तो करेंगी करेंगी, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। बट हाँ, धीरे धीरे से एक्टर्स बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं, तो बिजनेस करने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, सोचना पड़ेगा। आज ही इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।